0: Request for immediate alcometer and dope testing of the chief minister and all MLAs during the ongoing session. अच्छा ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी है, मैं उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी और मेरी कोशिश होती है 8-10 तो मिनट तो ऊपर दी ना हो। यानी कि प्रताप सिंह बाजवा ने सारे MLAs दे देते साइन कराया चुके LOP ने और उन्होंने चिट्ठी लिखी और अखीर च साइन कुलतार सिंह संधवा और उन्होंने चिट्ठी लिखी गई है कि जी जाँच कराओ, एल्कोमीटर मंगाओ, सारे के डोप टेस्ट कराओ। और उन्होंने साफ तौर पर कहा जी मुख्यमंत्री शराब पी के आए इस चिट्ठी मैनशन है। साइन ए एक एक बंदे देने प्रताप बाजवा ने लिखी है, सुखपाल खहरा, अरुणा चौधरी कुछ आदि साइन मैं नहीं समझ आ रहे, पर 12 बंद साइन इस चिट्ठी के होए पे है। एक हूँ जदों सैशन एडजन हो गया हंगामे तो बाद लंच हो गया और जो लंच तो बाद शुरू हों तो यह मंग एक बार फिर तो कांग्रेस की MLA करते हैं कि भाई असी तुहानू चिट्ठी लिखी है स्पीकर साहब कार्रवाई करो। तो स्पीकर साहब अगों की कहें, कहते मैं तुहाडी चिट्ठी नू सिरे तो खारज करदा। यानी कि जो मंग कांग्रेस की विधायकों वालों चक्की जा रही सी, जो चिट्ठी लिखी गई, कहते मैं सिरे तो खारज करदा।
1: विरोधी धिर वालों सदन के नेता की शान के खिलाफ कोई गल नहीं करनी बनती, जिम्मेवार हैं अते सत्कारयोग हैं। सो मैं तुहाडा जिहड़ा लैटर है इहनू नामंजूर करदा हाँ।
0: देखो मसला तो हुण वड्डा हो गया, इस मसले तो CM शराब ते सवाल, मैं बार बार कह रहा CM शराब ते सवाल, यह मसला हुण वड्डा हो गया और कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा दे विच भी इस गल नू लेके साफ कहा कि यह गल हुण इत्थे रुकनी नहीं, यह जवाब देना पैना है। इस गरिमा मई सदन की गरिमा नू ठे लगी है, वो ये कह रहे हैं। हुण कांग्रेस इस ते हमलावर हो रही है पर कि आम आदमी पार्टी है स्पीकर ते पहले डिनाई कर चुके, हुण चारा की बचदा। खैर सियासत सरगर्म है,
2: हुण जदों इह बहस चल रही सी साडे इक मैंबर खहरा साहब ते कई किस्म दीआं भद्दीआं टिप्पणियां चीफ मिनिस्टर साहब ने कीतीआं, उह अपनी गल रखणा चाहुंदे सी,
3: इशारे कीते
2: उहनां नूं डराण धमकाण दी कोशिश कीती, हड़काण दी कोशिश कीती। जिहड़े कस्टोडियन हुंदे ने हाउस दे स्पीकर साहब, ਉਹ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਗਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕੁਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਰਜ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ MLAs ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੋਨੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, PGI ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਹੁਣੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਬੁਲਾ ਲਓ PGI ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ MLAਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLAਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਥਲਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹੀਨ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹੀਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹੀਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰੱਖੇਗਾ?
0: ਮਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੋਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ BJP ਦਾ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ। इस तो भी गंभीर इल्जाम लाए ने। कहिंदे कोई पहली मरतबा थोड़ी है, इत्थे पार्लीमेंट भी शराब पी के जांदे सी। मैं नहीं कह रहा, बीजेपी कह रही है।
4: विधानसभा भी एक मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, वो भी एक अवमानना है, अपमान है, उस मर्यादा को भंग किया है। इट्स ऑलमोस्ट ए सैक्रिलेज ऑफ डेमोक्रेसी। भी सरकार मदहोश हालात में पंजाब विधानसभा में, और वो भी जब एक स्पेशल सेशन बुलाया हुआ है। हर एक सेशन की अपनी महत्व होता है, परंतु एक स्पेशल सेशन और मजदूर का नाम लेके, गरीब मजदूर का नाम लेके वो किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करवाया जाना चाहिए। डोप टेस्ट तो बहुत बहुत दूर की बात है। मैंने लीडर साहबान का कहा है साहब, मैं कहता हूँ बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे भी जो आज घोड़े पे सवार होके विधानसभा में आ रहे हैं।
0: सो सारे बयान, सारी सियासत सीएम शराब ते सवाल ते, मैं तुहाडे नाल करती सियासत भी इहदे च। पर सवाल वड्डा है कि जे सारा कुछ ठीक है तो क्यों नहीं करा लिया जाता डोप टेस्ट? पंजाब के लोग भी यह सवाल कर रहे हैं ना, भाई जे मैं ठीक हाँ, मैं जो किसी गलते खड़ा हाँ खड़ रहा, जे पंजाबी सारे ठीक ने किसी गलते खड़े तो खड़े है, तो जे गल नहीं है कोई विरोधी धिर की गल फिर मान लेनी चाहिए है। मैं तो इन्ना ही सवाल कर रहा बस, कि सीएम शराब ते सवाल है। चिट्ठी खारिज करती, यानी कि मंग जी कांग्रेस विधायकों की सी वो स्पीकर साहब ने खारिज करती। मैं अज जजमेंटल नहीं हो रहा, इतने जज तुसी करोगे, अज तुसी तय करोगे, जांच होनी चाहिए जां नहीं होनी चाहिए। ये लोक फतवा अज कमेंटा दसोगे, तुसी शराब पीती सी थोनू वेख के की लगता है या ना पीती सी, बस इनक गल है। क्योंकि सीएम शराब सवाल जिदा जवाब हुण तुसी देना, अज मैं दे कुछ नहीं कहना, हाँ कहूँगा, बिल्कुल कहूँगा, थोड़ा जा वेट कर लो, बाकी अज तुसी जवाब दियो, इजाजत दियो, सत श्री अकाल।
5: अमर ग्रुप हायर कर रहे हैं 1 साल के एक्सपीरियंस से क्लीन रिकॉर्ड वाले ओनर ऑपरेटर्स। ट्रकिंग इंडस्ट्री में 25 साल तो वध एक्सपीरियंस अते इंटरमॉडल कंटेनर्स च वड्डा नाम अमर ग्रुप, जिथे तुहानू मिलणगे वधिया रेट्स, ऑन टाइम वीकली पेमेंट, फ्यूल डिस्काउंट्स, 24/7 डिस्पैच सपोर्ट, टोरंटो तो मोन्ट्रियाल, GTA ते ओंटेरियो भर विच सेम डे घर वापसी वाले रेगुलर अते फ्लैक्सीबल कंटेनर लोड्स। हुणे कॉल करो 905-893-2270 एक्सटेंशन 206 या 207, 905-893-2270 एक्सटेंशन 206 और 207। अमर ग्रुप, जिथे ड्राइवर्स नू मिले फैमिली वांग रिस्पेक्ट।
6: बेस्ट बार्गेन कारपेट्स एंड फ्लोरिंग सिर्फ एक ना ही नहीं सच्ची बेस्ट बार्गेन है।
7: बेस्ट बार्गेन ते मिलते ने ब्रांड नेम कारपेट्स, हार्डवुड, वाइनल अते लैमिनेट फ्लोर्स बार्गेन प्राइसेस ते।
6: साडे स्टोर ते आके आप सिलेक्शन देखो या अपने घर बैठ के चूज करो।
7: लाजवाब क्वालिटी, टॉप क्लास सर्विस, बेस्ट बार्गेन तो बेहतर कोई नहीं।
6: We also service hotels, motels, banquets and high-rise buildings. Best Bargain Carpets, 905-696-7877.
8: CCCA lei karza maaf karwana bas inna hi aasan hai.
9: Collection callan, power sale notice, credit cardan da udhar, sarkar valo tax di mang. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੀਤਿਆਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
10: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
8: ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ।
11: CWC Immigration is one of the largest immigration companies and they have 4 offices in Canada ਚ ਨੇ ਤੇ 12 ਇੰਡੀਆ ਚ। ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਖੇਰਨ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੂ ਦ ਕਲਾਇੰਟਸ।
12: ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ CWC Immigration। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ CWC Immigration। 905-670-4444।
13: ਕੀ ਲਗਾ ਤਾ ਤੁਝੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ
14: ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗੀ?
13: ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਝੇ ਬਚਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ।
15: वाह मेरे हीरो, आते ही कर दिया गुंडों को जीरो।
16: मेरे 2-3 आदमियों को मार के खुद को तू शेर समझ रहा है?
17: अरे पूरी फौज पड़ी है तीर्थ लड़ने के लिए,
16: तो भेज अपनी फौज, अब भी आ जा।

0: तो क्या खाता है यार, इतनी ताकत कहाँ से लाता है?
1: मेरा भरोसेमंद साथी एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल, जो देता है मुझे घोड़े की जैसी चुस्ती फुर्ती और ताकत, और साथ में बढ़ाता है मेरा स्टैमिना।
2: गिग एक्सप्रेस जो कि हायर कर रहे ने ओनर ऑपरेटर अते कंपनी ड्राइवर फॉर सिटी वर्क एंड मॉन्ट्रियल ट्रिप। जे तुसी ओंटारियो दे किसी भी सिटी च रहने हो ते मिसिसागा तो ओशवा या मिसिसागा तो विंसर दे लोड लेना चाहने हो ते आज ही कॉल करो 905-615-0544 एक्सटेंशन 6013। गिग एक्सप्रेस।
3: सत श्री अकाल जी, आप देख रहे सारे दर्शकों नु, महेंद्रपाल सिंह ढेरी वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। ते जिवें साडे दर्शकों नु पता ही है जी, हुण गर्मियां दा सीजन आ चुका ते केटरिंग घरां दे विच ब्याह शादियां फंक्शन सारा कुछ अखंड पाठ घरां दी नवें घर दी ओपनिंग बच्चे दा बर्थडे तुसीं करना तां मोहन ढाबे नूं तुसीं भुलना जायो। केटरिंग करवानी है तां तुसीं जरूर साडे नाल संपर्क करो, मोहन ढाबे ते आओ 416-450-99। साडे कोल हर तरहां दे नवें नवें डिजाइन, हुण तुहानूं डिस्पोजेबल प्लेटां लैके आउण दी वी लोड़ नहीं, साडे कोल नवीआं नवीआं प्लेटां कप कौलियां गलास सारा कुछ पहुँच चुका। तो तुसीं जरूर एक बार साडे नाल संपर्क करो, साडा फूड तो तुसीं ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो, साडी प्रेजेंटेशन देखो, एक बार साडे यूनिट दे विच साडे रेस्टोरेंट दे विच पधारो। एक क्वींस गेट बुलेवार्ड यूनिट नंबर 13 असीं बोल्टन दे विच आ जी, अपने हाईवे 50 एंड क्वींस गेट का कॉर्नर है मोहन ढाबा, 416-450-99। सत श्री अकाल जी।
4: रब ना करे जे तुहाडी कार ट्रक जां ट्रेलर किते भी एक्सीडेंट हो गया है जां खराब हो गई है तां फिकर करन दी जरूरत नहीं, अज ही कॉल करो एसटी टोइंग जां कामटो 416-243-7777 जां तुसी कॉल कर सकते हो 416-513-1313। ए सारी इंश्योरेंस कंपनी नाल खुद डील करदे ने एसटी टोइंग।
2: Sarai Trucking, the name you can trust in transportation industry. Hire kar rahe ne AZ company drivers and owner operators for Midwest, Southwest, California and Toronto Montreal run. Steady work around the year. All new equipments de naal 24/7 the friendly dispatch aur the vadhiya pay rate te weekly payment basis te direct deposit lain layi ajj hi call karo. Sarai Trucking 905-794-8837 905-794-8837 Sarai

0: ओपनली स्टेटमेंट दिता है कि जो कम या जो फंक्शनिंग मैं आप विच करना चाहता सी या जी मेरी विजन है वह इतने नहीं रल रही, मैं उस तरीके की रिस्पैक्ट तो रेवरेंस नहीं मिल रहा, इस करके मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा।
1: आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यू से भटक चुकी है।
2: मैं ये समझ सकता भी एक छोटी दुकान तो एक बड़े शोरूम चे चले गए, गलत है। इन्हां दी बैकग्राउंड जानदा, जिन्ना क मिसयूज आम आदमी पार्टी एजेंसीज दा करदी उदों किते वध बीजेपी करदी है।
0: एडवोकेट HS फूलका नूं वी वेखदे आ, ओह वी बीजेपी ज्वाइन कर रहे ने। बीजेपी वाल ज्वाइनिंग इन्नी बहुतात विच, इन्नी बहुमत विच क्यों हो रही है कि कदे गां जाके थोड़नूं जे जां कुछ ऑफर आउंदा है जां
2: देखो भगवंत मान होवे, चाहे सुखबीर बादल होवे, चाहे प्रगट सिंह होवे, चाहे राजा वड़िंग होवे, ये मैटर नहीं करदा। मैटर करदा पंजाब दे इश्यूज।
0: तुसी अपने पार्टी मेंबर्स जिवें सुखपाल सिंह खेड़ा, राजा वड़िंग, उन्हां नूं कदे कहिंदे हो वी ऐ इदां तुसी ना एक्ट करिया करो जे कोई होर कर रिहा? एटलीस्ट
2: 3 करोड़ लोकां दे प्रति फैसले लैणे आ, तुसी लोकां नूं जोक सुणा के उन्हां दा ढिड नहीं भर सकदे। अज लॉ एंड ऑर्डर कित्थे खड़ा हैगा? अज साडा एग्रीकल्चर सिस्टम कित्थे खड़ा हैगा?
0: पर जिदा पंजाब दी पार्टियां दी चोण हिट एंड ट्रायल मैथड्स से हो रही है, हुण वी जे पार्टी वालों सानू नहीं रिकवरी हुई, आपां इहनूं पा दिंदे आ वोट, इधरों रिकवरी नहीं हुई, इधरों वोट पा दिंदे,
2: हुण आ जिहड़े छड्ड के गए आ, इह कोई विचारधारा वाली गल तां है नहीं।
0: पिछे जे मूवी और दी रिलीजिंग दी गल आई है लॉरेंस
2: दी, बेसिकली देखो इह तां देखो ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ
0: ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ,
2: ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਟੌਰ ਟੱਪਾ, ਦੇਖੋ
0: ਪੰਜਾਬ 95 ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਰਿਲੀਜ਼। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ?
2: ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟ

0: अकाली दल की तो अभी आई, हमने तो 2 दिन पहले ही बोल दिया था, मेरे घर परसों दिल्ली में प्रेस वाले आपके मिले थे, उनको भी मैंने बता दिया था। तो कोठी गिनती नहीं, उनकी गिनती खत्म हो गई। आप तो मुख्यमंत्री साहब सब कुछ करेंगे, जो नहीं भी होना चाहिए वो भी होगा, और ये एमएलए फिर भी नहीं रुकेंगे। अरोड़ा ने कई अरोड़ा है जो जाएंगे।
1: इसमें कहा गया है कि पुलिस के दबाव और विजिलेंस के दबाव के चलते ही 65 लोग,
0: आप ना पुलिस का दबाव है, 6 महीने में कोई ऑफिसर इनकी नहीं सुने।
2: अमर ग्रुप हायर कर रहे हैं 1 साल के एक्सपीरियंस से क्लीन रिकॉर्ड वाले ओनर ऑपरेटर्स। ट्रकिंग इंडस्ट्री विच 25 साल तो वध एक्सपीरियंस अते इंटरमॉडल कंटेनर्स च वड्डा नाम अमर ग्रुप, जिथे तुहानू मिलणगे वधिया रेट्स, ऑन टाइम वीकली पेमेंट, फ्यूल डिस्काउंट्स, 24/7 डिस्पैच सपोर्ट, टोरंटो तो मोन्ट्रियाल, GTA ते ओंटारियो भर विच सेम डे घर वापसी वाले रेगुलर अते फ्लैक्सीबल कंटेनर लोड्स। हुणे कॉल करो 905-893-2270 एक्सटेंशन 206 या 207, 905-893-2270 एक्सटेंशन 206 और 207। अमर ग्रुप, जिथे ड्राइवर्स नू मिले फैमिली वांग रिस्पेक्ट।
3: Best Bargain Carpets and Flooring सिर्फ एक ना ही नहीं सच्ची Best Bargain है।
4: Best Bargain थी मिलते ने brand name carpets, hardwood, vinyl अते laminate floors bargain prices थे।
3: साडे स्टोर ते आके आप selection देखो या अपने घर बैठ के choose करो।
4: लाजवाब quality, top class service, Best Bargain तो बेहतर कोई नहीं।
3: We also service hotels, motels, banquets and high rise buildings. Best Bargain Carpets, 905-696-7877.

0: गुजारिश मेरी इतनी है स्पीकर साहब कि देखो अठवां स्पेशल सेशन है, अठ हो गए। पहली अप्रैल 2022 होया, फिर 3 अक्टूबर 2022, फिर 19 तो 20 जून 2023, फिर 5 मई 2025, फिर 10 तो 15 जुलाई 2025, फिर 26 सितंबर 2025, 13 अप्रैल 2026 ते अज। ये सारे जिन्ने सर स्पेशल सेशंस आए ने स्पीकर साहब, मैं तुहाडा तां
1: जी
0: इहदे चों अल्टीमेटली सिता की निकलिया, नथिंग हैज कम आउट ऑफ। असी हर जगह मेजोरिटी ते जगह ते असी तुहाडी सपोर्ट कीती है, बट स्पेशल सेशन सदले कोई उहदा सिट्टा नहीं कोई निकलिया। तो मैं तुहानू यही कहना चाहना सर कि जे सेशन ही सदना हुंदा ते आपां रेगुलर सेशन सदीए, इहदे विच वी कोई क्वेश्चन आर नहीं सर, इहदे विच कोई जीरो आर नहीं जी, इहदे विच अपने एरिए दी किसी ने भी सारे MLA साहबाना ने अपनी कोई गल रखनी है, कोई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कोई नहीं जी। तो मेरी गुजारिश है कि रेगुलर सेशन सद्या करो, हर आदमी नूं टाइम भी मिल सके, मेरी यह बेनती है। नहीं तो जिन्हें 8 सेशन अज तक बुलाए गए ने इन्हों का कोई नतीजा कोई सिट्टा नहीं निकल सकता। मैं इन्नी गल कहना चाहूंगा।
1: थैंक यू, तुहाडी गल आ गई जी। मुख्यमंत्री साहब,
2: LOP साहब, जिहड़ा आपां पिछले दिनी स्पैशल सैशन सद्या सी, तुसीं कहिंदे हो कि इन्हां सैशनां दा कोई नतीजा नहीं निकलदा। गुरु साहब की बेअदबी के विरुद्ध जो कानून बनाया सीगा, जो आपां सोध कीती सी, हालांकि प्रगट सिंह जी कहिंदे सी राष्ट्रपति कोले फस जूगा, पता नहीं कितने फस जूगा, चलो कांग्रेस कोले ऑल्टरनेटिव होणगे, पर सर वो तो फिर जदों जदों दा गवर्नर साहब ने साइन करता तो फिर वो इस स्पैशल सैशन दी रिजल्ट सीगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਰ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ LOP ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਆਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੜ੍ਹਾ, ਇੱਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲ ਪਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲ ਪਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਜੈਸਚਰ ਦੇ ਦਈਏ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ ਹੈ ਸਰ, ਅੱਜ ਮੇ ਡੇ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ।

लोगों ने उस टाइम उन लोगों को टिकट नहीं दी जो पंजाब के लिए बात करना चाहते थे। अब यही एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो नहीं किया, ये नहीं किया, हॉस्पिटल में एडमिट होके आंखें दिखाने चले गए। ये तो उनकी इंटरनल बात थी, पैसे का लेन देन था, वो नहीं हुआ पूरा, तो इसके लिए वो भागे कि चलो पैसे तो लेकर जाओ। स्पेशल सेशन में आप देखेंगे कि इन्होंने कहा कि इनकी जो आ रही है लेबर डे की बजाय ये जो इनके अपने MLA हैं उनको भागने का खतरा है, उसके लिए फ्लोर पर ये कॉन्फिडेंस का मोशन लेकर आएंगे। जब जैसे जैसे सात भाग गए तो ऐसे जब भागने लगे तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि इनके जैसे MLA डरे हुए हैं, जैसे पंजाब के लोग डायरेक्ट इनको क्वेश्चन करने लगे हैं, आपने देखा कि कितने MLO को घेर कर बातें करते हैं, प्रेजिडेंटल रूल पंजाब में लगेगा। मुझे तो मैंने बोल दिया कि लगेगा, जब तक मेरे पास वो, जब मैं पंडित बन जाऊंगा ना वही खाता देखने वाला, फिर मैं बताऊंगा। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है, जिस आदमी के साथ रिलेशन या उसको रिलेट किया जा रहा है, पंजाब के DGP साहब ने किया है, उसमें क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटेलिजेंस फेलियर है और पंजाब का भी जो फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है। पुलिस स्टेशन में आदमी है तो उनको ये पता ही नहीं चला कि कौन चला रहा है बात। एक आदमी को कस्टडी में रखा है तो उसको प्रौणा बनाकर रखा है, गेस्ट बनाकर रखा है कि उसकी इंटरोगेशन हो रही है। पहले तो GC के ऊपर सवाल यह क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन मार्क आ गया कि आदमी अंदर बैठा है, पुलिस की कस्टडी में बैठा है, बाहर उसका आदमी वो कर रहा है, ID लगा रहा है, तो वो जो है ये सीरियस मैटर है। इसके ऊपर बहुत चीफ मिनिस्टर को इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। आज तक अपने जो CM है वो अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ है, उसने जो हमारी पुलिस है पंजाब पुलिस की मीटिंग भी नहीं बुलाई, SSP इमीडिएटली बुलाना चाहिए थे। और जैसे रेड अलर्ट जो जारी हुआ है उसके ऊपर जो पंजाब का होम मिनिस्टर है वो ही गुम है, तो नीचे क्या बनेगा? नहीं, वो तो हमारे प्रेसिडेंट जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, 3-3 स्टेट्स की ट्रेनिंग चल रही है, तो इसी महीने राजस्थान और स्टेट्स की भी, अजमेर में।

0: ये देखो ऐसे है, आपको हालात बताई दिए, इससे गंभीर हालात और बदकिस्मती के हालात क्या हो सकते हैं। जो लीडर ऑफ द हाउस है, चीफ मिनिस्टर है मौजूदा, वो अगर शराबी हालत में हाउस में आ जाए तो हाउस कैसे चलेगा। वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स ऑफ द हाउस पॉइंटेड आउट टुडे ही वाज इन अ ड्रंकन कंडीशन। सो लीड एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आई हैव डिमांडेड एक ब्रेथलाइजर टेस्ट और वो जो शराब का और डोप टेस्ट सारी असेंबली का करवाया थे, चीफ मिनिस्टर का पहले हो, दूसरा मेरा हो, फिर इनकी जितनी कैबिनेट उसका और सारे एमएलए का, मौजूदा दरवाजे बंद किए जाए, पीजीआई के डॉक्टर्स बुलाए गए और इधर डोप टेस्ट हो इनका।
1: बहुत ही गंभीर चीज है सर ये, जिस तरह
0: इससे और गंभीर क्या हो सकती है। इफ द हेड ऑफ अ स्टेट कम्स ड्रंक टू द असेंबली, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट डू द
1: डिमांड क्या कर रहे हैं सर।
0: हम यही कर रहे हैं कि अभी टेस्ट करवाए थे, ही स्टिल इन द असेंबली।
2: सर सेशन के पीछे क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस मोशन लानी थी आज?
0: नहीं, वो देखो ये तो एक तरीका था, बेसिकली ये बताना चाहते थे।

0: गैस का सिलेंडर अगर 3,000 बढ़ जाता है तो मजदूर जो वहां जाके खाते हैं, मजदूर की अपनी जीविका का तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, तो ये गैस सिलेंडर का बढ़ने का दाम बढ़ने का अर्थ ये है कि लाखों की तादाद में हिंदुस्तान की गरीब प्रभावित होगी।
1: देश अगर श्रद्धा के साथ याद करेगा मिसाइल मैन कलाम साहब को मिसाइल मैन के तौर पे, तो महंगाई की मिसाइल के तौर पे, महंगाई मैन के तौर पे देश याद करेगा श्री नरेंद्र मोदी को। इनकी महंगाई की रफ्तार तो सारे मिसाइलों के ऊपर जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ आज लगभग 1,000 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा है, और जो कीमत थी जनवरी में वो आज दुगनी हो गई, 3,000 के ऊपर पहुंच गई 1,500।
2: मोदी जी, महंगाई का कोड़ा आम जनता को एक ही बार मार लीजिए। पिछले 3-4 महीनों में आप 1,500 से ज्यादा रुपए का कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा कर चुके हैं। आपकी सरेंडर्ड विदेश नीति का, आपकी सरेंडर्ड और कंप्रोमाइज अर्थ नीति का खामियाजा आम जनता क्यों भुगतेगा? आपकी सरेंडर्ड ऊर्जा नीति का खामियाजा जनता भुगत रही है। एक ही साथ सबको आप बढ़ा लीजिए जितना बढ़ाना है। कल से 10 रुपए की चाय 15 रुपए की हो जाएगी, 10 रुपए का समोसा 20 रुपए का या 15 रुपए का हो जाएगा। जनता महंगाई से कराह रही है।
3: देखिए, बहुत ही शर्म की बात है कि देश के अंदर आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और आज ही के दिन 5 किलो का गैस सिलेंडर, छोटा सिलेंडर जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ गरीब और मजदूर लोग इस्तेमाल करते हैं, उस सिलेंडर का दाम 250 रुपये से भी ज़्यादा एक झटके में बढ़ा दिया गया। कहाँ से लाएंगे ये लोग, गरीब लोग, पैसा? कहाँ से ये सिलेंडर खरीदेंगे? कैसे इनका चूल्हा जलेगा? कैसे इनके घर खाना बनेगा? एक बार भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीब आदमी के बारे में नहीं सोचने
4: वाले हैं जो हाथ से काम करते हैं, चाहे वो खेत में काम करते हैं, मंडी में काम करते हैं, कोई ढाबा चला रहे हैं और जो कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं, और कोई हाथ का काम करने वाले हैं, कोई चाय बनाने वाले हैं, कोई समोसा बनाने वाले हैं, वो सबको मतलब मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो उनकी लेबर की वजह से देश चल रहा है, उसकी वजह से इकॉनमी चल रही है। और बीजेपी सरकार, देखो ये सिर्फ चुनाव के लिए रुके हुए थे, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के बारे में बात करते हैं। जैसे ही चुनाव हुआ तो इन्होंने वर्किंग क्लास को इतना बड़ा झटका दिया है। अब अगर सिलेंडर 2100 का 3,000 में होगा तो चाय भी महंगी होगी, समोसा भी महंगा होगा, बातें करते हैं जो बड़ी बड़ी, और खेत में जो ट्रैक्टर चलेगा, जो उसको जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको मंडी में लेके आएगा, तो उसका उसकी कॉस्ट तो हर जगह पे, जब जो भी जहाँ पे भी कुकिंग हो रही है, घर पे हो रही है, कमर्शियल जो खाना खाने जाएगा ढाबे पे, उसके उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी ना जी। तो ये बहुत बड़ा झटका दिया है उन्होंने, ये मतलब जो बीजेपी की है, लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, ये अपनी सिस्टर पार्टीज़ को भी, जो इसमें जाते हैं उनको भी खा जाती है, उनके लीडर्स को भी खा जाती है। और अब ये इनका जो आगे का है वो मजदूर है, मजदूर इनका टारगेट है, जो काम करने वाले लोग हैं वो उनका टारगेट है। ये सबकी इकोनॉमी को ख़त्म कर देंगे, और बिल्कुल कहीं भी देश में कुछ भी होता है, पूरी दुनिया में कुछ भी होता है, अगर स्कूल के बच्चों को भी मारा जाता है तो वो बोलते नहीं हैं जी, मतलब अपने हकों के लिए बोलते नहीं हैं। हमारे पास भी, हम चेयरमैन हैं जो उसकी चेयरमैनशिप हमारे पास है ब्रिक्स की, जो सबसे एज वेल पावरफुल बॉडी है दुनिया में, तो उसकी उसकी प्रेजिडेंसी हमारे पास है, हम बोलते नहीं हैं, फिर भी नहीं बोलते हम अन्याय के खिलाफ, और उल्टा हम जो वर्किंग क्लास का है उसके ऊपर हम अन्याय कर रहे हैं। तो ये मैं इसकी निंदा करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि ये वापस लो। अभी वर्किंग क्लास सड़क पे आएगी, जिस तरह किसानों ने किया था। अभी मैं आज इंटरनेशनल वर्कर्स डे पे मैं सबको कहता हूँ कि अभी हमें ये लड़ाई है सड़कों में लड़नी पड़ेगी।
5: देखो, सबसे पहले मैं आज कौमांतरी मजदूर दिवस है, सो मेहनत कश मजदूर भरावों मैं बधाई दिना, पर बहुत वड्डा तुहाडा जिहड़ा सवाल है कि अज दे दिन ते आज के दिन पर ही बीजेपी सिलेंडर महंगा कर रही है। पूरा देश, वो मेहनत कश लोग हैं जो जिनकी वजह से देश में तरक्की हो रही है, देश में व्यापार चल रहा है, देश में बिजनेस बढ़ रहा है, वो है मेहनत कश लोगों की वजह से जो अपनी मेहनत से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी साइड बीजेपी सरकार और सिलेंडर 3,000 से ऊपर ले जा रही है कि ये मेहनत कश लोगों का क्या हल करने जा रही है। ये उनको आज मुबारकबाद दे रहे हैं जी सिलेंडर महंगा करके। सो बीजेपी को सीधा सीधा ये दिख रहा है कि पंजाब नहीं, पूरे देश को उन्होंने लूटना है, देश को बर्बाद करना है। ये मोदी जी की चाल है, किसी को

आम आदमी पार्टी की चर्चा राघव चड्ढा एंड कंपनी की यह हुई है। दावे नाल कह रहे हो सुनाऊंगा भी तुहानू किने कीती है। मैं बड़ी जिम्मेवारी नाल इत्थे गल कर रहा, कोई गल इत्थे ओ नहीं होएगी कि जी हवा च गल होए। सुनाऊंगा भी बकायदा रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा कि मीटिंग आम आदमी पार्टी की चर्चा राघव चड्ढा एंड कंपनी की क्यों ना होवे, क्योंकि हालांकि आम आदमी पार्टी के लीडर और मुख्यमंत्री आप यह गल कह रहे थी मीटिंग तो पहला दी प्लान सी, पर चूंकि स्यापा नवा सीगा तो फिर चर्चा होनी लाजमी सी। खैर सीधा मसले ते आना, सवेरे सवेरे सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो उत्थे जलंधर है उत्थे MLAs का पहुँचना शुरू हो जाता, पार्टी के वर्कर बहुत सारे पहुँचते, बहुत सारे चेयरमैन पहुँचते, बहुत सारे एक एक करके सारी टाइमलाइन दसूँगा होया की है, किन्ने बजे की होया, किसके नाल गुप्त मीटिंग हुई है, सारा कुछ दसूँगा। शुरू होंदे ते अंदर जांदे और उस तो बाद ऑडिटोरियम च होंदी एक मीटिंग, मीटिंग नू संबोधित करदे ने मनीष सिसोदिया, जिहदे च सरकार दे कम्मां दी गल होंदी है, जिथे यह गल होंदी है कि फीडबैक की है लोगों का, और जिथे हुण अगे दी रूपरेखा भी तैयार की जाती है कि भाई अगे पिंडां च जाके की करना। एक परची या एक डायरी फड़ाई जाती है जिहदे च एक सर्वे टाइप का फॉरमेट सीगा जिहड़ा कि जाके इन्हां ने पिंडां पिंडां च हुण करना, फीडबैक लेना लोगों का, यानी कि बहुत सारे सेंसस तो चल रहे हैं पर कुछ फीडबैक हूँ अपने ऑब्जरवर, हूँ मैं यह नहीं समझ आ रहा ऑब्जरवर कौन ने, ये पार्टी के लोग ने या जिहड़े पैसे दे के हूँ एक सेंसस कराया जा रहा है वो लोग ने, मतलब बहुत सारे अजे डाउट ने देते। मैं तुहानू इशारा देता, तुहानू हिंट देता, बाकी बहुत जल्द ये भी सामने आएगा। खैर वो सारिया चीज़ा चल दियाँ, पर इसे विचकार एक बड़ी इंट्रस्टिंग वीडियो सामने आई, बहुत इंट्रस्टिंग तस्वीर उस वीडियो उस मीटिंग तो सामने आई हैं कि जदों आम आदमी पार्टी के विधायक जिहड़े सी ओ कुछ कसरत जी करते भी नज़र आए, एक्सरसाइज करते नज़र आए, हालांकि एक्सरसाइज करते नज़र आए वह मजाक भी बहुत उड़ रहा, पर उड़ना नहीं चाहिए, वो मजाक उड़ाने वाली गल नहीं है। वो एक रिंग जिन्हों वो कहें एक दूजे तो लंघा रहे थे और ये मैसेज देने की कोशिश सी कि असी सारे कट्ठे हाँ। उदों की है कि जी लंच तो पहला सारी एक्सरसाइज की गई, फिर कराया गया लंच। एक गैप इन्ना क्यों दिता गया, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही संबोधित करना सी, और जो मुख्यमंत्री साहब ने संबोधित करना सी ते उन्हां दा समा 3:30 बजे का सी, क्योंकि कोई चंडीगढ़ होर किसी चैनल का कॉन्क्लेव और बहुत सी और आंदे आंदे थोड़ा जा लेट हो गया, इस करके लंच तो पहला सारी एक्सरसाइज कराई गई। पर बार ते MLA कर रहे सी एक्सरसाइज, सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट दे मालक दे कमरे दे विच शुरू हुई एक वक्री एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज मौजूद सीगे मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया के सज्जे खब्बे वाले दो तीन लोग, मतलब उन्होंने नाल के लोग जो काम कुम सामते दो लोग जो मेरे को जानकारी है तीन से शायद, तो होशियारपुर तो मैंबर पार्लीमेंट राजकुमार चब्बेवाल तो उन्होंने पुत्र ईशांत चब्बेवाल, यानी कि जो चर्चा पिछले कई दिनों तो दो MPs लैके चल रही थी, एक मुख्यमंत्री ने दो दिन ब्लैक कॉफिया पिया के अपनी खुशी जाहिर करके, मैं हूँ इस तो ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, एक MP नू एक दिन पहला बुलाया गया, फिर अगले दिन एक मीटिंग सो कॉल्ड रखी गई हड़ा नू लैके सतलज के प्रबंधा नू लैके, दो दिन उत्थे चर्चा हुई यानी कि मैनेज करने की कोशिश की, तो एक MP नू अज सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के मालक के कमरे के विच एक्सरसाइज मैराथन चली। हुण तुसी कहोगे बिल्कुल है, बड़ी बहुत पुख्ता जानकारी दे रहा। खैर हुण मैं आना मसले पर, बहुते MLA नहीं पहुंचे, हाँ हुण एक वो वखरा सवाल है, वो MLA सदे नहीं गए सी या वो आए नहीं, इहदा जवाब आम आदमी पार्टी बेहतर दे सकती है, और मैं इस करके कह रहा ये थोड़ा जिहा क्लैरिफाई होना चाहिए, फिशरी है कुछ। पहला यह कहना कि MLAs नू नहीं सद्या गया, कोई MLAs की मीटिंग नहीं, पर अज MLA सीगे, फिर सारे नहीं सी ते की हुणे आम आदमी पार्टी क्लैरिफाई करेगी कि सारे सदे सी जानी, और जो जानकारी है शायद कल भी एक मीटिंग सदी जाने की तैयारी की जा रही है, वो शायद चंडीगढ़ होएगी, जो मेरे सोर्सिस कह रहे, बाकी उहदी पुष्टि आम आदमी पार्टी ने करनी है। हुण मैं जिहड़ी गल करनी चाह रहा कि मीटिंग आम आदमी पार्टी की पर चर्चा जाण वालियां दी, चर्चा गड़वियां दी, समुंदर दी चर्चा, फोन कॉल ते वधाइयां दी, ये मैं नहीं कीती, ये मुख्यमंत्री जदों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही जुड़े उन्होंने वैसे तो गल्लां बहुत कही, फीडबैक की है, लोग की कहिंदे है, पर वो अपनियां गल्लां च फोकस इहदे ते ही करदे नज़र आए, जो चले गए जाण दिओ, कोई फर्क नहीं पैणा। पार्टी शुरू हुई सी इन्ने बंदियां तो 4 सीटां 14 चाहिए, 19 कल्ला मैं रह गया, जिहड़े सी ओ गड़वियां भर के चले गए, वो गड़वी जो गए सीगे, पर असी समंदर हाँ, यानी कि आम आदमी पार्टी दी समीक्षा मीटिंग, अच्छा हाँ समीक्षा तो याद आया, बार बोर्ड सीगे के जी ऑब्जरवर मिलनी या मीटिंग, अंदर जिहड़ा
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲੈਗ

अपने रंजन सोए जिन से व्यादन पाया मान, नानक गावीए गुणी निदान, गावीए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पार।

असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पखसार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत।

एक है निरसरीक है निर्लंब है असंब है अगम है अजम है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है वाह है अगाह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जोगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाह नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध द बुद्ध द वृत करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परं परम परमेश्वरं पुरुष पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदी अभेदी अनाम अकाम समस्तो पराजी समस्त स्ताम तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेस हैं भुजंग प्रयात छंद अगादे अबादे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमस्तवंग नरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे तरपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे।

कृपालं स्वरूपे को कर्मं प्रणासी सदा सर्वदारिद सिदंग निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद। अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्वय प्रसाद। आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन।

जात है अजाद है चरपट छंद त्वे प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग जूता सर्वंग मुक्ता रसावल छंद त्वे प्रसाद नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे नंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाद विभूते अनंगी अनामे तिरभंगी तिरकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोतरे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं शरीक है अमितो अमीक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भगवती छंद त्वे प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं मेसल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी देहांद हैं के राज करहिंद हैं करी मुल्क माल हैं के हुसनल जमाल हैं गनी मुल्क राज हैं गरीब लिवाज हैं हरी फुल शिकान है हरा सुल्फकान है कलंक प्रणास है समस्त निवास है अगुंजल गनी मेहर जाय करहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब करा है के नरकंक प्रणास है बैस्तुल निवास है के सर्वल गुवान है हमेशल अरवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईस है समस्तल अदीस है देसल अलेख है हमेशल अपेख है जमीन उल जुमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमित सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमित विभूत है के अमित उपसा है के आत्म प्रवाह है के अचलंग अनंग है के अमित उपांग है मद पर छंद त्वे प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशिंज अंग आसना भंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास आजन बाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशज गात अज जन बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार अडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मन छंद त्वे प्रसाद करुणालय है अरकालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोभारण है त्रित के तरण है जग के कर्ण है मन माने है जग जाने है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्व पासे है सर्वनाशे है करुणा कर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है परते पर है करुणा कर है।

अजप अजप है, अथप अथप है, कृत कृत है, अमृत अमृत है, अमृत अमृत है, करणाकृत है, अकृत कृत है, तरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत है, अमृत अमृत है, अजब्बा कृत है, अमृत अमृत है, नर नायक है, खलकायक है, विश्वम्बर है, करुणालय है, नृप नायक है, सर्वपायक है, पव पंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्य नमो

परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कला करता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे तरपंगी त्रकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे लेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे नरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजाय विभूते गजाय वगनी में हरियं करियं करिमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सियंग बब सुभंग

प्रसाद सवैये सराबग सुध समूह सिधान के देख फिरियो घर जोग जती के सूर सुरार्दन सुध सदाधिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत कौ न देखित प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सरंग सवारे कोट तरंग करंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के भूप बलि वेद।

गुंजत गूड गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ता।

साध समूह प्रसन्न फिरे जग सतर सवै अपलोक छपेंगे। मानव इंद्र विजेंद्र नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजादक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिव।

काहू ले पाहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग गिरे लटकायो काहू लखियो हर अवाची दिशा में काहू पिशाह को शीस नवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूज

पटके पट पट की जन जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब या करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारे आप अपनी बूझ उचारे।

ग्रंथ करा पूरन सुभराता। किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तुज जब पै दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला।

दुख दर्द भौ निकट न तिन नर के रहे। हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहे। चौपाई संबत सतर है सहस।

कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विठो जिस दिया ये वड़ियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सखोआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोई।

मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कै नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु।

पूरे। प्रभु का सिमरन कबो न चूरे। प्रभु का सिमरन हर गुणवाणी। प्रभु का सिमरन सहज समानी। प्रभु का सिमरन नेचल आसन। प्रभु का सिमरन कमल विगासन। प्रभु का

है माँ उदात भी सरथी वै अगन मायहू मत पुराण कनक असव है वरपूम दान न्योली कर्म करे बो आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमकन में कर सी कटावै तो पी हो मैं मैल न जावै हर के नाम समसर कुछ नाहीं नान गुरमुख नाम जबत गत पाहीं मन कामना तीर्थ दे छुटै गर्भ।

संगरचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर करमा न जो हवन सो दूर परा न छोड़ जाय तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै तो हे दर्त प्रिय प्रसन्न संग होए।

दस वस्तूले पाछे पावे, एक बस कारण भी खोट गवावे। एक पीना दे दस पी फिर ले, तो मूड़ा कहो कहाँ करे। जिस

पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिरे, मिथ्या नेत्र पेकत परत्र रूपाद, मिथ्या रचना पूजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावे, मिथ्या मन पर लो लुभावें।

देवास्पदी जेह प्रसाद शक्ति अमृत खाएं तिस ठाकुर को रख मन माहें। जे प्रसाद सुगंधत तन लावें तिस को सिमरत परम गत पावें। जे प्रसाद बसें सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। जेह प्रसाद गृह संग सुख बसना हाट पैर सिमरो तिस रसना। जेह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याये ध्यान जोग। जेह प्रसाद पाठ कुटुंबर हंडावें तिसे त्याग कत अवर लुभावें। जेह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जेह प्रसाद तो सब को माने मुक्ता को जस रसन बखाने।

साध कै संग एक उपरजत है न, साध की महिमा वर्णै कौन पुरानी, नानक साध की शोभा परमाय समानी, साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुल्लै, साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सब की देन, साध कै संग मनोहर बैन।

संग सफल जन्म, साध का संग नहीं कच काल, दर्शन पेट होत निहाल। साध का संग कलुखत हरै, साध का संग नरक पर हरै। साध का संग इया उआ सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला। जो इच्छे सोई फल पावै, साध का संग न मृथा जावै। पार ब्रह्म साध इत बसै, नानक उदरै साध सुन रसै। साध का संग सुनो हर नाम, साध संग हर के गुण गाओ। साध का संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै।

कई कोट पर दर्भ को हिरे, कई कोट पर दुख न करें, कई कोट माया शरमाहे, कई कोट परदेश परमाहे। जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राज रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाचर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पाणी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर।

नहीं छूटे। संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत कोई मलीन, संत के दुखन शोभा तिहीन, संत के हते को रखे न कोय, संत के दुखन थान प्रष्ट होए।

कृष्ण बुझै साध संग हर हर जस कहत है। सर्व रोग ते ओ हर जन रहत है। अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ में सोई।

निर्मल निर्मली जिसे बुझाएं तिसे सब भली। सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नन गुर ते पाई। सत वचन साधु उपदेश है सत तेजन जाकर दे प्रवेश है।

अवस्पति सतगुर सिख की करह प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर तुरमतमल खिरै गुर बचनी कर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिखवड़ पागी है सतगुर सिख का हलक पलक सवारै नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै गुर कै गृह सेवक जो रहै।

सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तो द्याखे लख करोड़, सच्चे सब दान सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पाशाह, नानक सच ध्यान सच, जो मर जमे सो कच न कच।

मुसलमाना सिफत शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार, बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार, हिंदू साला ही साला दर्शन रूपे अपार, तीर्थ ना वैर जप।

शिव के आपे सृष्ट उपाई है। आप ही वह सतगुर के रूप दे विच प्रगट हुंदा है, आप ही वह सेवक बन के गुरु के हुक्म ते चलदा है, ते आप ही उन्हें सारे सृष्टि जिहड़ी है संसार इनू पैदा किया। महाराज गरीब नवाज जी कहिंदे हन, आपे नेड़ै नाहीं दूरे, आप ही सारियां दे बिल्कुल नेड़े है, नज़दीक है, सारियां दे अंदर वसिया होया। बूझै गुरमुख से जन पूरे, गुरमुख गुरु दे मार्ग ते चलन वाले गुरसिख इस गल नूं बुझदे ने, ओ जन ओ गुरमुख पूरे हन। तिन की संगत एह निसलाहा, गुर संगत एह वडाई है। ऐसे गुरमुखां दी संगत दे विच बहुत लाभ प्राप्त हुंदा है, क्योंकि उन्होंने गुरु की संगत की है। एक गुरु दे संगत की वड्याई है, गुरु साहब की संगत की, कि उन्हां गुरमुखां दी संगत दे विच लाहा प्राप्त हुंदा है जग्यासू नूं। जुग जुग संत पले प्रभ तेरे, तेरे संत जन जुगा जुगा तो बहुत भला करन वाले, दया करन वाले, लोकां दा भला करन वाले हन। हे प्रभु जी, हर गुण गावह रसन रसेरे, ओ सदा अपनी रसना तो वैगुरु दे रस भरे गुण जड़े हन उस्तत करदे रहिंदे हन। उस्तत करें पर हर दुख दालद, जिन नाहीं चिंत पराई है। वो उस्तत करदे हन जिदे नाल उन्हां दा दुख ते दलिद्र दूर हो जांदा है, और उन्हां नूं फिर पराई चिंता नहीं रहिंदी, भाव वह लोकां दी निंदिया चुगली नहीं करदे। होए जागत रहे न सूते दिसै, वह सदा ही ज्ञान अवस्था दे विच जागदे रहिंदे हन, कदी उन्हां दा मन माया दे मोह विच सौंदा नहीं। संगत कुल तारे साच परिसै, ते जिहड़ी उन्हां दी संगत जिहड़े उन्हां दे साथी ने उन्हां नूं भी तारदे ने, उन्हां दे अगे सच्चे नाम नूं परोसदे ने, भाव उन्हां नूं भी नाम जपाउंदे हन। कल मल मैल नाहीं ते निर्मल ओए रहै भगत निमलाई है। उन्हां दे अंदर उन्हां दी संगत करन दे नाल पुराने कल मल जिहड़े कीते हुए कर्म ने, उन्हां दी मैल उन्हां दे विच नहीं है, और सदा ही वह पवित्र निर्मल ने, उन्हां दा मन शुद्ध है, खालस है, और वह भगती दे विच लिव ला के रखते हैं। बूझो हर जन सतगुर बाणी, महाराज कहिंदे हन, हे हरी दे जनो, गुरु के प्यारिओ, गुरु की बाणी नूं बुझो। बाणी दे विच बड़ियां बरकतां ने, बड़े बख्शां ने, बहुत ज्यादियां, बहुत वड्डा ज्ञान है। इहो जोबन सास है देह पुराणी, पर दूजे पासे यह जो जोबन ते शरीर दा जवानी वेख के बंदा वाहिगुरू नूं भुल जांदा है, इहदे सास घटदे जांदे हन ते देह पुराणी हुंदी जांदी है। आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप रिदह त्याई है। अज कल जां जिन्ना चिर दा टाइम है उहदे तो बाद तां इहने देह ने मरना ही है, शरीर ने मरना है। हे प्राणी, इस करके रहिंदे समें दे विच लाहा प्राप्त करना चाहीदा है, वाहिगुरू दे जाप नूं जपना चाहीदा है। छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा, हे प्राणी हे जीव, गुरु साहब उपदेश देंदे हन, ये जिहड़ा कबाड़ है ते झूठे संसार दे नाल तू प्रीत पाई है, इहनू छड़ अंदरों, त्याग दे इसनू। कूड़ मारे काल उछाहाड़ा, ये प्रीत करके ही, इस झूठ दे नाल मोह पैण करके ही मौत जिहड़ी है उछल उछल के तेनू मारदी, भाव मौत दा असर तेरे करके, मोह करके तेरे उत्ते मौत दा साया है। साकत कूड़ पचै मन होमै, दोह मार्ग पचै पचाई है। जिहड़े साकत हन वह इस कूड़े संसार दे नाल मोह दे विच फस के खुवार हुंदे हन, और दुविधा विच पै के दो मार्गां वल चलदे हन, द्वैत दे विच उन्हां दा मन दुविधा विच पिया रहिंदा है। इस तरह पचदे हन।

0: पुत्र ईशांक चब्बेवाल। यानी कि जो चर्चा पिछले कई दिनों तो दो एमपीज़ नू लेके चल रही थी, एक नू मुख्यमंत्री ने दो दिन ब्लैक कॉफियां पिया के अपनी खुशी जाहर करके, मैं हूँ इस तो ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, एक एमपी नू एक दिन पहला बुलाया गया, फिर अगले दिन एक मीटिंग सो कॉल्ड रखी गई हड़ा नू लैके, सतलज के प्रबंधा नू लैके दो दिन उत्थे चर्चा हुई, यानी कि मैनेज करने की कोशिश की। तो एक एमपी नू अज सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के मालक के कमरे के विच एक्सरसाइज मैराथन चली। हुण तुसीं कहोगे बिल्कुल है, बड़ी बहुत पुख्ता जानकारी दे रहा। खैर हुण मैं आना मसले पर, बहुते एमएलए नहीं पहुंचे। हाँ हुण एक वो वखरा सवाल है, वो एमएलए सदे नहीं गए सी या वो आए नहीं, इहदा जवाब आम आदमी पार्टी बेहतर दे सकती है। और मैं इस करके कह रहा ये थोड़ा जिहा क्लैरिफाई होना चाहिए, फिशरी है कुछ। पहला यह कहना कि एमएलएज़ नूं नहीं सद्या गया, कोई एमएलएज़ की मीटिंग नहीं, पर अज एमएलए सीगे, फिर सारे नहीं सी, ते की हुणे आम आदमी पार्टी क्लैरिफाई करेगी कि सारे सदे सी जानी। और जो जानकारी है शायद कल भी एक मीटिंग सदी जाने की तैयारी की जा रही है, वो शायद चंडीगढ़ होएगी, जो मेरे सोर्सेस कह रहे हैं, बाकी उसकी पुष्टि आम आदमी पार्टी ने करनी है। हुण मैं जिहड़ी गल करनी चाह रहा कि मीटिंग आम आदमी पार्टी की, पर चर्चा जाण वालियां दी, चर्चा गढ़वियां दी, समुंदर दी चर्चा, फोन कॉल ते वधाइयां दी, ये मैं नहीं कीती। ये मुख्यमंत्री जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही जुड़े, उन्होंने वैसे तो गल्लां बहुत कही, फीडबैक की है, लोग की कहते हैं, पर वो अपनियां गल्लां च फोकस इहदे ते ही करदे नज़र आए, जो चले गए जाण दिओ, कोई फर्क नहीं पैणा। पार्टी शुरू हुई सी इन्ने बंदियां तो, चार सीटा 14 चाहिया, 19 कला मैं रह गया, जेडे सी वो गड़वियां भर के चले गए, वो गड़वी जो गए सीगे, पर असी समंदर हाँ। यानी कि आम आदमी पार्टी दी समीक्षा मीटिंग, अच्छा हाँ समीक्षा तो याद आया, बार बोर्ड सीगे के जी ऑब्जर्वर मिलनी या मीटिंग, अंदर जेड़ा मीटिंग दे सामने फ्लैग सीगा वो सीगा समीक्षा मीटिंग। मैं तां समीक्षा की गल कर रहा, तो मुख्यमंत्री साहब तो आप ही सारा कुछ चर्चा करते रहे, चाहे राघव चड्ढा एंड कंपनी की छड़के जाने वालों की, तो फिर क्यों ना कहा जाए कि चर्चा हुई है। हाँ अंदर मनीष सिसोदिया ने जो डायरेक्शन दिते ने, वह बाहर आके किसी ने अजे तक नहीं दस है, बहुते एमएलए मैं भी कहा, वह एको गल कहते भाजी फोन पर नहीं, मिल के गल करा, तो कल तक थोड़ा होर जानकारी दे देंगे, मतलब एमएलए कह लो, चेयरमैन कह लो, वर्कर कह लो, जो भी उत्थे मौजूद सके, एवें ही सुइयां ना घुमाई जाए, कदे साडे फोन भी टैपिंग ते ला दो कुछ नहीं लभना, सोर्स ही होंदा। अज मुख्यमंत्री साहब भी कहिंदे सी अज तक मैनू सोर्स लभिया नहीं किसी चैनल ते, ओ तुहाडे सज्जे खब्बे होंदे सोर्स ला लो। खैर मुख्यमंत्री साहब ने आप जिक्र किया राघव चड्ढा होरां दा, सुन लो तुसीं,
1: जिहड़ियां दो चार पिछले दिन ही होया कुछ, दो चार बंदिआं नाल कोई पार्टी नहीं कोई फर्क नहीं पैंदा हुंदा, समुंदर चों गड़बी भरन नाल समुंदर नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, पर गड़बी की औकात पता लग जाती है कि वह किन्ना क पानी चाहती सी, बस गड़बी अपना जिन्ना क पानी चाहती सी अपना लैके चली गई, समुंदर फिर छल्ला मारदा आज तुहाडा जलंधर च ठाठा मारदा कट्ठ, ये समुंदर दीआं छल्लां ने, समुंदर दीआं ठाठा ने। इस तों बाद केजरीवाल साहब ने संबोधन करना है, उन्होंने भी उन्होंने भी तुसीं हौसला देना है इस गल का कि डटे हुए हैं जी, पंजाब है ये, ये पंजाबी हाँ असी, जिते खड़ गए तो खड़ गए। मैं हैरान हाँ कि मैनू बहुत दिनों के बधाई दे फोन आई जाते हैं, जबकि मीडिया कुछ होर गल कही जाता, लोग बधाई दे जाते, मैं क्या भी बधाई कहदी, कहते जी पता नहीं क्यों सानू वधिया जिहा लगी जांदा, भी चलो मतलब जो परमात्मा करी जांदा वधिया ही करी जांदा, आ जो होया पिछले दिन ही कहते वधिया हो गया जी।
0: सो चर्चा तो हुई है, हुण कोई दसे ना दसे मुख्यमंत्री साहब दस गए, यानी कि माल मालका दा मशहूरी कंपनी दी डरते है, और वो डर इन्हां बयाना तो भावें मुख्यमंत्री साहब कहण के कोई डर नहीं, जिहड़ा चला गया जाण दिओ, हुणे ते 1 तरीक नूं पता लगेगा। हुण सवाल वड्डा है कि जो एमएलए नहीं सी आए, बहुते नहीं आए, मैं ये गल उदों तुसीं सारे मान सकदे हो जे एमएलए सदे ही ना होण, एमएलए ते आए सी, मनीष सिसोदिया कल तक कह रहे सी कोई इस तरह की मीटिंग नहीं है, ये तो सिर्फ ऑब्जर्वर्स की मीटिंग है, कल दा ट्वीट देख लो, हुण एमएलए भी आए सी और कुछ नहीं भी आए सी, दाल में कुछ काला है या जनाब पूरी दाल ही काली है। और मैं तो इक्को गल कहना होना, ये तो पतीला ही काला, देखी चलो अगे अगे आगे आगे देखिए जनाब होता है क्या। इजाजत दियो, सत श्री अकाल।
2: अमर ग्रुप हायर कर रहे हैं 1 साल के एक्सपीरियंस से क्लीन रिकॉर्ड वाले ओनर ऑपरेटर्स, ट्रकिंग इंडस्ट्री विच 25 साल तो वध एक्सपीरियंस अते इंटरमॉडल कंटेनर्स च वड्डा नाम अमर ग्रुप, जिथे तुहानू मिलणगे वधिया रेट्स, ऑन टाइम वीकली पेमेंट, फ्यूल डिस्काउंट्स, 24/7 डिस्पैच सपोर्ट, टोरंटो तो मॉन्ट्रियल, GTA ते ओंटेरियो भर विच सेम डे घर वापसी वाले रेगुलर अते फ्लैक्सीबल कंटेनर लोड।

0: दिन ही यार मेरे लिए तो जलंधर आना ही बड़ा मुश्किल सी। टिब्बे वो साईं जी कहिंदे वो किहड़ा पिंड है, मैं कह शफीपुर। कहिंदे अच्छा, चंगी जगावे नाल मंगी ते गाहलां दा वसा कोई ना, शफीपुर नूं राह कोई ना। असीं उत्थे जम्मे जा टिब्बे जे हुंदे सी, ते वाइट हाउस ये वो सब लोग बस तकदीरां दे। शुक्र है ओहदी जात दा, शुक्र है दाता तेरा, ये कहना चाहिए शुक्र है मेरे मालिक का।
1: अज सुकून समझते हो, मुड़ के स्टेजा ते आ गए हो, लोग अगे नालों वध के प्यार दे रहे ने,
0: हाँ जी
1: जां
0: प्यार।
1: लोग उड़ीक रहे सी कदों हंसराज जी
0: अच्छा, मैं सोचता
1: अस्तीफा
0: सी,
1: दे के आ जान।
0: मैं सोचता सी इन्होंने कहना जा कम कर। कोई बंदा गया ना,
1: जी
0: कहिंदे जी कम नहीं मिलदा। उस सियाणे ने कहा वो इत्थे घर ही बैठे रहने हैं, कम लभो, कम कम करया करो। कोई कहिंदा कम सवाह करिए, जिथे कम लैण जाने हो कहिंदे जा कम कर।
1: कर
0: आफ्टर लॉन्ग टाइम, इन्नी
1: जी
0: गैप तो बाद मैनू ये लगता सी कहणगे जा कम कर, सियासतदाना जा।
1: हाय हाय हाय
0: लेकिन बहुत चंगे आ पंजाबी, कनेडे दे लोकां ने, वलैत दे लोकां ने, अमरीकना च जिहड़े पंजाबी बैठे आ ना, इत्थे भी उन्होंने कहा चल गलती हो जाती है कोई गल नहीं, फिर सीने नाल ला लिया।
1: ये फराक दिल्ली कितों लैके आने भाजी, जिदा मीडिया विच बह के आप ही कह दें हो कि मैं चंबल गया सी, ये कहिंदा नहीं कोई भाजी।
0: नहीं, ऑनेस्ट रहना चाहिए। तुसी दो एक दो गाने जे हिट हो जान, चार पैसे आ जान, दो चार बंदे सलामा करन लग पैन, ते वो फिर लोग कहंदे ना सरिया जिहा जिहड़ा अड़िया हुंदा, फिर मालक कढ भी लैंदा ना, तुहानू
1: वाह
0: पता है ना, उहदे तो डरना चाहिए। तो असी हमेशा डर के जिंदगी गुजारी है। मैं तो बहुत मालिक, वैसे मैं गॉड लविंग च यकीन करदा, गॉड फीरिंग च नहीं करदा,
1: जी वाह वाह
0: पर जिहड़े गुनाहां तो फिर डर लगदा ही है ना। इस करके उच्चा बोलना बोलीए, करतारों डरीए। जिन्हें किसी का दिल दुखाता ना सागर साहब, तो वो बंदे नू माफी नहीं। किसी ने कहा सीगा कि केड़ी केड़ी गुनाह दी माफी है, वो कहिंदे मालक बड़ा मेहरबान है, वो हर गुनाह नू माफ कर दिंदा। कहिंदे फिर माफी केड़े गुनाह ने, कहिंदा किसी का दिल ना तोड़ी, ओदी फिर जिहड़ी हूक है ना विदाउट एनी डिले तुर दरगाह जांदी, वो गर्क कर दिंदी बंदे नू। इस करके सज्जन जी किसी का दिल ना तोड़ी। इस गलों मैं बहुत डरदा रहा,
1: वाह
0: डरदा रहा। हालांकि ये नहीं कि मैं कहना कि मैं जैसियां गल्लां करना उन्ना कंप्लीट हो गया हूं, पर कोशिश करता
1: कर
0: रहा।
1: रहे हैं
0: की गुनाह होए, कोई दुध धोता नहीं हुंदा,
1: जी।
0: बड़ा सौखा है मीडिया च जां स्क्रीन दे अगे मैं जी बहुत चंगा, ना ना ना, हुण बंदे नूं पता हुंदा मैं की कीता। लेकिन ऐसा कुछ ना करो जिहदे नाल किसी दा दिल दुखे जां दिल टुट जावे।
1: हुण बैठ के गाने गा रहे हो
0: हां जी,
1: ते
0: नहीं विच विच खड़ा भी हो जाना
1: वो ही
0: मैं।
1: कह रहे हैं भाई, लोग कह रहे हैं दिल तो
0: एक
1: ज्यादा हो
0: दिन
1: गया
0: मैं
1: है,
0: चंडीगढ़ गाउंदा सी
1: तो वीडियो में
0: रोज
1: देख रहे हैं लोग
0: फेस्टिवल आ,
1: नाल गा रहे भाई तुहाडे
0: लोग
1: सारे गाने
0: एदा मैनू इशारा कर
1: जी,
0: दे।
1: खड़े हो जा।
0: मैं क्या अच्छा, फिर मैं
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: कोई गल नहीं, अज चैसी खड़की नहीं कायम आपा।
1: जी, तुहाडा ना किसी ने रील बनाई एक, शायद तुसी देखी होवे, उन्हें क्या शेर बुढ़ा हो सकता बब्बर शेर नहीं, तुहाडी रील पोस्ट की थी उन्होंने लिख के, भी
0: अच्छा,
1: सुनो अज भी की गा रहे
0: मैनू नहीं पता, ना मैं शेर हाँ ना मैं बब्बर शायर हाँ। ओदी करम ले फिरदा, ओदी रहमत ले फिरदा, एक अदना जा बंदा, एक खेत मजदूर दा पुत,
1: हाँ।
0: 6.5 लाख ना जित जावे, ओदी भी मैनू कोई पछतावा नहीं। मैं एक करी चाहुंदा, मैं कहिंदा हुंदा सी ना मैं एक करी MP जरूर बनना, ते बन गया जिद्दन उदने ही। मैं क्या हुण 1000 वारी हरा रब्बा, तेरी मेहरबानी, तू एक करी मैनू बनाता, फिर मैं उदास भी नहीं होया।
1: कदे कदे यकीन डोलता भी मालिक तो
0: बंदे ही आपा फरिश्ते तो है नहीं गे,
1: जी।
0: यकीन डोलना तो नहीं चाहिए। कदी कदी फिर गम दी जदों इंतहा हो जाती है, तन्हाई, बड़े बड़े घर लै लेंदे बंदा, खलारे पा लेंदा, ते मेरे बच्चे बड़े चंगे आ, मैनू उदास नहीं होण दिंदे। मेरे दो बेटे वड्डे जवान हो गए, व्याहे गए हैं, जिहड़े मेरे भतीजे दोने, नवराज जी युवराज जी तो हो गए ना मेरे
1: जी
0: लखते जिगर, मेरे कालजे दे टुकड़े, ते गैरी गुरवर वो भी मेरे समझो बेटे ही है, अमरीक दे बेटे।
1: जी जी हाँ जी
0: ये मैनू उदास नहीं होण दिंदा। ਨਵਰਾਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੁਵਰਾਜ, ਗੈਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ

0: करके
1: तू बच जाएगी।
2: क्या
1: कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए?
3: वाह मेरे हीरो, आते ही कर दिया गुंडों को जीरो।
2: मेरे दो तीन आदमियों को मार के खुद को तू शेर समझ रहा है?
1: अरे पूरी फौज पड़ी है तीर्थ लड़ने के लिए,
2: तो भेज अपनी फौज, अब तू ही आ जा।
1: अरे ऐसा तू क्या खाता है यार, इतनी ताकत कहां से लाता है?
2: मेरा भरोसेमंद साथी एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल, जो देता है मुझे घोड़े के जैसी चुस्ती फुर्ती और ताकत, और साथ में बढ़ाता है मेरा स्टैमिना।
4: गिग एक्सप्रेस जो कि हायर कर रहे ने ओनर ऑपरेटर अते कंपनी ड्राइवर फॉर सिटी वर्क एंड मॉन्ट्रियल ट्रिप। जे तुसी ओंटारियो दे किसी भी सिटी च रहने हो ते मिसिसागा तो ओशवा या मिसिसागा तो विंसर दे लोड लेना चाहने हो ते आज ही कॉल करो 905-615-0544 एक्सटेंशन 6013 गिग एक्सप्रेस।
5: सत श्री अकाल जी, प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों नु, महेंद्रपाल सिंह ढेरी वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। ते जिवें साडे दर्शकों नु पता ही है जी, हुण गर्मियां दा सीजन आ चुका, तो केटरिंग घर ब्याह शादियाँ फंक्शन सारा कुछ अखंड पाठ घर की नवें घर की ओपनिंग बच्चे का बर्थडे करना तो मोहन ढाबे में तुम भुलना जायो, केटरिंग करवानी है तो तुम जरूर साढ़े संपर्क करो, मोहन ढाबे पर आओ 416-450-99 साढ़े को हर तरह के नवें नवें डिजाइन हूँ, थानू डिस्पोजेबल प्लेटा लेके आने की भी लड़ नहीं, साढ़े को नवी नवी प्लेटा कप कौलियाँ गिलास सारा कुछ पहुँच चुका, तो तुम जरूर एक बार साढ़े ना संपर्क करो, साडा फूड तो तुम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो, साड़ी प्रेजेंटेशन देखो एक बार, साढ़े यूनिट के साडे रेस्टोरेंट के पधारो, एक क्वींस गेट बुलेवार्ड यूनिट नंबर 13 असी बोल्टन के जी अपने हाईवे 50 एंड क्वींस गेट का कॉर्नर है, मोहन ढाबा 416-450-99। सत श्री अकाल जी।
4: जो ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਸੀ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਬੈਟਸ, ਟਰੋਫੀਜ਼, ਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਸੈਸਰੀ ਦੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ 2565 ਸਟੀਲਸ ਐਵਨਿਊ ਈਸਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 905-789-7664।
6: ਕੁਆਂਟਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ 1998 ਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ।
7: ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਪਲੈਨ ਜਿਵੇਂ RRSP, RESP ਜਾਂ TFSA ਅਤੇ ਨੌਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲੈਨਸ ਵਿੱਚ 8-12% ਰਿਟਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
8: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, $60,000 ਤੋਂ $100,000 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
9: ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ, ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਐਸਟੀ ਟੋਇੰਗ ਜਾਂ ਕਾਮਟੋ 416-243-7777 ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-513-1313। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸਟੀ ਟੋਇੰਗ।
10: Sarai Trucking, the name you can trust in transportation industry. Hire kar rahe ne AZ company drivers and owner operators for Midwest, Southwest, California and Toronto Montreal run. Steady work around the year. All new equipments de naal 24/7 di friendly dispatch ate vadhiya pay rate te weekly payment basis te direct deposit lain layi ajj hi call karo. Sarai Trucking 905-794-8837 905-794-8837 Sarai

0: रब ना करे जे थोड़ी कार ट्रक जां ट्रेलर किते भी एक्सीडेंट हो गया है जां खराब हो गई है ता फिकर करन दी जरूरत नहीं आज ही कॉल करो एसटी टोइंग जां कामटो 416-243-7777 जां तुसी कॉल कर सकते हो 416-513-1313 ए सारी इंश्योरेंस कंपनी नाल खुद डील करदे ने एसटी टोइंग
1: Sirai Trucking, the name you can trust in transportation industry. Hire kar rahe ne AZ company drivers and owner operators for Midwest, Southwest, California and Toronto Montreal run. Steady work around the year. All new equipments de naal 24/7 di friendly dispatch ate vadhiya pay rate te weekly payment basis te direct deposit lain layi ajj hi call karo. Sirai Trucking 905-794-8837 905-794-8837 Sirai

0: सर आपका लोन निकला है।
1: रख वो रख दे, रख वो।
2: याओ, I'm the dealer.
3: ਗੱਲ ਕੀ
4: ਤੂੰ ਬੇਚਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਤੂੰ ਬੇਚਦਾ।

हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु।

0: वो लोथ सौखी है अकाल मूर्त मूर्त दर्थ हस्ती यो हस्ती जो समय तो परे है अकाल मतलब समय तो परे विजाउ टाइम समय तो पार हस्ती कह लो पंजाबी सिद्धा मूर्त का अर्थ होंगे हस्ती भी जो हस्ती है जो वजूद है एक सता है एक वो सता जी सवा है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक ऐसी मूर्त ऐसी मूर्त ना जुड़ने रंग बरंगी फोटो की गल थोड़ा इतने कितने लोगों को गुमराह करते हैं लोग इतने उस मूर्त की गल है जो मां मूर्त सदा रही है वो परमेश्वर वो हरी वो अकाल जो समय तो परे वो अकाल मूर्त इतने नौवें पातशाह ने कहता जो हर मूर्त है जो समय की हद विच नहीं सदा है पर वो जिहड़ी हर मूर्त है हरी परमेश्वर की हस्ती है कहिंदे ये काम क्रोध मोह दे वस पै के इस प्राणी ने इस मनुख ने उसनू भुला दिता है काम क्रोध मोह वस प्राणी हर मूर्त बिसराए इधरले पासे थोड़ी जी आवाज है पिछले पास इधर कर ले आप सो एक दो प्रमाण होर ले लो कहते वाणी विच वचन आउंदा है भी जिहड़ा साडा मन है ना मन ये मतलब रूप ते चम कह लो ते दम दो दी पकड़ विच ज्यादा रहिंदा है पढ़ो बाणी का प्रमाण यह श्री राग दे विच गुरु नानक साहब का शब्द है उहदे विच इक पंक्ति है कहिंदे मालक है मन है पूरा पढ़ लो रहो पद मत जान सह गली पाया मत जान सह का मतलब भी मत समझी भी कितने परमेश्वर नूं गल्लां नाल ही पा लिया जाता है मत जान सह गली पाया मालक है मन है रूप की शोभा इत विधि जन्म गवाया कहते जिहड़ा है ना साडा मन है यह माल दे मान विच रहिंदा है माल पदार्थवाद भी लोड़ी दी चीज घरे होवे कोले होवे घर दी शोभा हुंदी है वखरी चीज है पर मन करके पकड़ रखनी कहिंदे मन करके ना माल दे मान च रहिंदा है मान दे विच भी मेरे कोल इन्नी प्रॉपर्टी इन्नी जायदाद इन्नी इन्ना कुछ इन्ना इदां कहिंदे उस मान च रहिंदा है भी इन्ने कुछ दा मालक है मैं कहिंदे मालक है मन है रूप की शोभा जायदा मन है जिहड़ा रूप की शोभा च रहिंदा है भाव के चम ते दम ते पकड़ रहिंदी है इहदी पकड़ रही है परमेश्वर दियां गल्लां गुलामी जवान जवानी गुलामी रह जांदी है कहिंदे जिहड़ा मन है कहिंदे उत्थे जुड़िया रहिंदा है जां रूप ते ते जां माल ते मालक है मन है रूप की शोभा इत विधि जन्म गवाया कहिंदे बस इस तरीके दे नाल ही मनुख जन्म गवा लैंदा है भी जे परमेश्वर का जस गाया जीवन तो गाने कोई शक नहीं दे विच पर कहिंदे मन ने नहीं गाया मन ने नहीं गाया गल बनी नहीं जे मन गावे तो गल बने मन कर मन मने तो गल बने ते नहीं तो जे मन ना मने तो राम राम करता
1: सब जग फिरै
0: सब जग फिरै राम
1: ना
0: हुण इहदा अर्थ ही नहीं उहदा नाम नहीं लैणा याद नहीं करना भाव कि जवान नाल तां लिया पर मन करके नहीं जुड़िया मन करके उहदी होंद नूं नहीं मन्निया कर्म करन वेले कदे नहीं भै मन्निया भी रब जी मैनूं वेख रहे है जिहनूं मैं राम कहना है वाहिगुरु कहना है अल्लाहू कहना है हरी कहना है नारायण कहना है सतनाम कहना है भी मन उहदी होंद नूं नहीं मन रहा भाव समझ गए हुण जे मन उहदी होंद नूं मन्ने तां जीव दे नाल उहदे गुण गाउणे तां मुबारक है कीरत प्रभ की गाओ मेरी
1: रसना
0: रसना भी गुण तो रब ने परमेश्वर के जीवन ही गाने हैं ना साधन तो रसना ही है पर जे मन ने नहीं मनिया फिर कह भी राम राम करता सब जग फिर राम ना पाया जाए अगम अगोचर अत वड्डा अतुल ना तुल सो इदा आप समझ लिया भी मनुख कई बार काम क्रोध मोह दे वस विच पै के हरी मूर्त नूं मन तों भुला दिंदा है परमेश्वर की हस्ती नूं मन तों भुला दिंदा है जिहड़ा मन है ये चम ते दम ते कई वारी रह जांदा है काम क्रोध मोह वस प्राणी हर मूर्त बिसराई झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यों सुपना रह नाई कहिंदे इस झूठे शरीर नूं सच्चा करके मन लैंदा झूठा तन झूठ दर्थ पहला समझ गए ना भी शरीर समय की हद च है कोई मनुख तो हो नहीं सकता कई झूठ दर्थ नहीं पता हुंदा झूठे दर्थ ही नहीं हुंदा।